0: 들어가서 얼른 절려.
1: 아빠
0: 켈리 페리 बच्चा देखिन कुकुर बिराल जस्तो झगडा
2: परेछ
0: सौदा लगेर भित्रिन अन्त दोषे के भएको
1: ओइ इसाको त मसँग अम्बो
2: के
1: अन्त भोलि ड्राइभ पनि गाउदिनस
2: आउदिन
1: जान्न
2: आउदिन आफै जा
1: साच्चै के आउदिनस

0: सैन्य समुदायमा
1: बिलायन भरि
0: ऑन एयर
1: एपमा
0: अनि स्मार्ट स्पिकरमा भन्नुहोस्
2: फ्लाइ बीएफपीएस
1: यो बीएफपीएस गोठा रेडियो हो।